कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब अर्ज़ों। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। इंसाफ का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा बैठा हुआ है, तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों, आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ वीकेंड बस पेश किया जा रहा है। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन और यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरिहरन की आवाज में सुबह सुबह लोसियो का नाम, पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन की आवाज में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl। अगला भजन जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है ये सुंदर भजन जरूर आप सुनते ही रहना।

जन यात्रा की खास प्रोग्राम में जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये सुंदर भजन की ओर, हरिओम शरण जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो मीठे हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन आपने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में एक सुंदर सा श्री कृष्ण जी का भजन बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में।

खास भजन यात्रा प्रोग्राम है। रेडियो SBS के जरिए प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और बहुत सी सुनने वालों बस इस वक्त प्रोग्राम भी सुनते हैं। चले प्रोग्राम में सुंदर सा राम जी का भजन बस पेश किया जा रहा है। एक सुंदर सा

सुंदर सा श्री राम जी का भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS की जरिए। सुनने वालों चले प्रोग्राम में विपिन सचदेवा की आवाज में। आपकी बार एक सुंदर और अति सुंदर श्री हनुमान जी का भजन पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर, जो आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

श्री हनुमान चालीसा आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। प्रोग्राम भजन यात्रा पेश किया जा रहा है। चले यहां से प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं आरती भजन की ओर। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए और सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ, शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है नरेंद्र चंद।

पेश किया जा रहा है। जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं, आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। यहां से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों के लिए बस पेश किया जा रहा है। तो प्रोग्राम में ना सारा वक्त हम लेते हुए सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को स्वागत किया जा रहा है गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ। यहां से हम आपको ले चलते हैं पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम की ओर। पहला गाना आप जरूर सुनते ही रहना।

जीना यहाँ मरना वहाँ, इश्क सिवा जाना कहाँ। माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में एक और खास गाना पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश की आवाज में अबकी बार ये गाना।

मुखी इसकी आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। आज की इस प्रोग्राम में ये गाना आप सुनते ही रहना।

रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में। ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

0: मस्ताना।
1: खासतौर पर आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले काफी प्यार भरी गाना की ओर, मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले एक गाना की ओर और वो भी खास तौर पर बदलते रिश्ते फिल्म का नाम है। किशोर कुमार और अनुराधा पोटवल की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। चले प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में एक गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। पद्मश्री मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर अब की बार प्रोग्राम में होगा।

कल्याण पूरा और मोहम्मद रफी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले आज के प्रोग्राम में एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं। आलमगीर और खासतौर पर मेहनाज की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। अभी आपने सुना पाकिस्तानी फिल्म का गीत जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई है। पुरानी नगमे आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा।

बदनश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये खास गाना बस आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले लता मंगेशकर की आवाज में आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर प्रोग्राम में

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले अब की बार किशोर कुमार की ओर हम आपको ले चलते हैं। किशोर कुमार प्रोग्राम में।

USB इसकी सब ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में. आज क्यों हमसे पर्दा है ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई. चले द हार्ट ऑफ द बिलियंस द माइटी मुकेश

हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चलिए एक और खूबसूरत गाना मुकेश जी के आवास में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में ये खास गाना बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-22-66-66-11 और हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीफोन नंबर है 03-22-65-65-60। इसी तारकि नंबर पर अपना सभी और सभी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं।

द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम पे पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है। ये गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। किशोर कुमार एंड लता जी की आवाज में चले मिलकर ये गाना को सुनते हैं।

किशोर कुमार एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। आसरो बीठे की गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। उसी सुनने वालों है जो पुरानी नगमे इस वक्त सुनते हैं जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। चले गाना और किशोर कुमार की आवाज में पेश किया जा रहा है।

किशोर कुमार के आवास में ये खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चलिए हम आपकी बार ले चलते हैं फिल्म बारादरी की ओर। उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। फिल्म का नाम है बारादरी। बारादरी फिल्म का नाम। खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। तो चले प्रोग्राम में ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और

मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। अब की बार जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

रेडियो वेव्स भी इसकी जरिए ये खास पुरानी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई रेडियो एसबीएस की जरिए अभी आपने सुना। चले अब की बार ये गाना की ओर। ये गाना भी काफी पुरानी है जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है मुकेश और गीता दत्त की।

रेडियो स्टेशन के ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले मन्ना डे और लता जी के आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS के जरिए काफी पुरानी फिल्म का गीत आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है फिल्म का।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में नीरज श्रीधर और श्रेया जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं अब की बार ये गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना कुमार सानू और साधना सरगम प्रोग्राम में।

और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। एक गाना और कुमार सानू जी की आवाज में जो पेश किया जा रहा है,

और रेडियो एस बी एस की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हमारी सभी सुनने वालों जो खासतौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है, आप सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले हम आपको ले चलते हैं एक गाना हरिहरन एंड कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में जो पेश किया जा रहा है। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11।

रेडियो SBS के जरिए कैनबिस प्रोग्राम में पेश की गई है। हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना भी आपने सुना। सरो मीठे की गाना सुनकर और बेहद पसंद किया है। सुनने वालों रेडियो SBS का वेबसाइट radio sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम आप सुन सकते हैं।

नाम सामी और श्रिया जी की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में अब की बार हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए। जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

बैरन हेलो गुडमिदा बसबीस किया जा रहा है। शनिवार का दिन है तो मतलब होते हैं लोकल टाइम का प्रोग्राम। बस यहां से आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है, जो तकरीबन 2 बजे तक आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जाएगी। तो चले आज की लोकल टाइम प्रोग्राम का खास तौर पर पहला गाना जो पेश किया जा रहा है उमर की आवाज में जरूर और जरूर सुनते ही रहना ये खास गाना।

सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। उमर के बाद मरहूम नदीम खान प्रोग्राम में होगा।

मरहूम नदीम खान की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए जानी ओ जानी। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। लकी सिंह अब की बार प्रोग्राम में होगा। आप सभी सुनने वालों की सेवा में ये गाना पेश किया जा रहा है लकी सिंह की आवाज में।

लकी सिंह की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए अब की बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं। हाँ, एक रीमेक स्टाइल का गाना होगा तो जरूर आप सुनते ही रहना। पुरानी फिल्म का गीत है, कुछ चलाएगा म्यूजिक रीमेक स्टाइल में।

आप सभी सुनने वालों को शुभ वीकेंड विश किया जा रहा है, हैव अ नाइस वीकेंड। चले प्रोग्राम में जूनियर्स लाइव, गाना जो आप सुनेंगे मिस्टर रकीब की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रखीब की आवाज में गाना भी आपने सुना चले प्रोग्राम में मार्सेल फान ड्यूरन। हाँ, आते हैं अब की बार हमारे उत्तराखंड शहर का मशहूर गाने वाला

हमारे यूट्रेक्ट शहर का मशहूर गाने वाला मार्सेल फन ब्यूरन ने उसी मशहूर गाने वाला की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। हम आपको ले चलेंगे मरहूम नदीम खान की ओर। कोरा कागज था ये मन मेरा फिल्म आराधना का गीत ओरिजिनल किशोर।

पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अरविंद। सभी सुनने वालों जो अपना अपना रिएक्शंस देते हैं, सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना, लोकल टाइम का प्रोग्राम रहेगा।

0: is Radio SBS.
1: सुनवा इसी तरह से अभी आपने सुना सतीश के आवास में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चलिए अब की बार एक और मशहूर गाने वाला मीका सुक्खू चटनी गाना लेकर के।

0: मीका सुक्खू की आवाज में ये चटनी मिक्स आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में आपकी बार विनेश आरजी की ओर हम आपको ले चलते हैं। आपकी बार ये गाना पेश किया जा रहा है फाया पेपरे।
1: मैं नाम है विनेश आरजी एंड यू लिसन टू रेडियो SBS।

0: आवाज में आज के ये प्रोग्राम भी अभी आपने सुना। सर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, चलिए अब की बार प्रोग्राम में गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में, हम आपको ले चलते हैं ये गाना की ओर। आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जो रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है। और गाना आप सुनेंगे अमित की आवाज
1: में, मजा क्या आएगा दिल लेने देने के लिए, जो देना है तो अभी दे दो, जो लेना है

में ये गाना पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-11 इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार सागर मलिक की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो पेश किया

और सभी सुनने वालों की सेवा में लोकल टाइम का प्रोग्राम बहुत से सुनने वालों बस इस वक्त सुनते हैं। सभी को वेलकम कहा जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में एक बार फिर से उमर की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS का।

राणा का गाया हुआ गाना उमर की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पीस की गई है। Teamsdrift 237 शहर उत्तरेख से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का। चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए आज की इस लोकल टाइम के प्रोग्राम में जरूर और जरूर सुनते ही रहना। एक बार फिर से आज के प्रोग्राम में लोकल टाइम के प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं और वो भी खासतौर पर विम डमरी की ओर।

विम दमरी और साथियों की आवाज में ये गाना बस पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS की जरिए जो पेश की गई है लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए, जरूर आप सुनते ही रहना।

हीरा मुझे मिल जाए गाना जो प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों आज की लोकल टाइम का प्रोग्राम का एक आखिरी और आखिरी गाना पेश किया जा रहा है और इसी गाना के साथ हमें इजाजत और आज्ञा दीजिए। हमारा आज का प्रोग्राम सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आप सभी सुनने वालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। मैं था आपका खिदमत गुजार।

0: छोटे मियां लाइव इन कॉन्सर्ट उदित नारायण एंड आदित्य नारायण फादर एंड सोन सामन लाइव ऑफ हेट पोडियम बिलीव एन अनफॉरगेटेबल अवन फॉल इकोनिसे बॉलीवुड हिट्स प्रachtige म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट फ्रॉम टॉप निवो
1: रुक जा ओ दिल दीवाने
0: सोंदा 15 नवंबर सोंदा 15 नवंबर इन रोटरडम अहोय आरटीएम स्टेज ट्वी जनरेशंस एन पोडियम एन अनफॉरगेटेबल अवन मिस deze spectaculaire live concertavond niet en koop nu je ticket via i-tickets.com. Raga Events proudly presents Baremia Chote Mia live in concert Udit.

कैसा है चिनाब का, इस गजोंग दौर किशोर कुमार. एंड आउट द फिल्म चलती का नाम गाड़ी कम गजोंग दौर किशोर कुमार वेयर एक लड़की भीगी भागी सी.

0: लंका फूंक दिए जाकर गढ़ लंका, हाँ लंका फूंक दिए हनुमत ने लंका।
1: माता मैं आज्ञा चाहता हूँ, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई संदेशा हो तो आदेश हो माता।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार शानू की आवाज में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे, मैं उम्र गुजार दूं।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आजमाहिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जीने करदा।

हमारी अधूरी कहानी फिल्म से आपने सुना ये बेहतरीन गाना, हमारी अधूरी कहानी अरिजीत सिंह की आवाज में। और अब आप सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में बाबुल से, कह रहा है दिल दीवाना।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है इस आयद फिल्म अजनबी एंड आयद फिल्म दबंग 3 कम खसों तो जावेद अली नैना लड़े

अलका याचनिक और उदित नारायण की आवाज़ में आपने सुना सुन मितवा। फिल्म का नाम है लगान। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म गदर से। उदित नारायण की आवाज़ में आप सुनिए उड़ जा काले कावा तेरे मुँह विच खंड पावा।

फिल्म मेड इन चाइना से आपने सुना नेहा कक्कड़ की आवाज में ओढ़नी, और अब आप सुनिए सोनू निगम और अलका याचिक की आवाज में फिल्म रेफ्यूजी से। ये फिल्म पहला फिल्म है अभिषेक बच्चन और करीना कपूर का। ऐसा लगता है जो ना हुआ है होने को है।

कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। कुछ मैं बदल गया हूँ, कुछ दिल बदल गया है। मेरा वजूद

आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, आखिर मेरा जुनून मेरे काम आ गया, उनके लबों पे आज मेरा नाम आ गया।

0: क्या हुआ?
1: वो तो
0: क्यूट है ना?
1: अरे पहलवान है,
0: पर तुमसे प्यार करती है।
1: हो नहीं सकता।
0: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
1: हो नहीं सकता।
0: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
1: ये हो नहीं सकता।
2: होनी को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।